भूतमन्त्रतन्त्रपूर्णस्वरूपजनवाञ्छितदानशील वात्सल्यसागर कृपारसकृष्णमेघ देवत्रिकूटगिरिशेखर सुप्रभातम् नृत्तावसान ढमरुध्वनि सम्प्रभूत सर्वाक्षर प्रणुति सुस्फुट तत्त्वसार श्रीसत्यसुन्दर शिवात्मकवागधीश